0: चली गई
1: बाजी।
0: रो गया वल्ले दिल मेरे नू लाके चली गई, भुल दी नहीं भुल जानी दिलों भुला के चली गई।

0: से शराब और याना,
1: वाह,
0: तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रही खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक

एक मंजर बिना बोले जो तू कहता उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे। सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल।

मैं कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।

असे दिल भी हार सचनी हो। सटे अंग अंग पुंगरे ने खार चिंदुआ, सटे अंग अंग पुंगरे ने खार चिंदुआ, जिंद वटे दीत मंग से ओवी तेनु पुकाना व पार चिंदुआ हो। लगते तेरे हास प्यारी चिंदड़ी, लगते

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर दाए, लुक लुक के

एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: जीवन भला है ये किस
1: जी दी रचना तो बाद हूँ मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा दिन जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हूँ। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जदों आ रहे हैं वो बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह बंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
2: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे ਇਦਾਂ ਪੀੜ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਫਿਰ

बीते पल में याद कराता नहादा विश्वासिक दे गम दे मारू तली दे अंदर डाची कुमी सदरा दे चार चुफेरे ढूंढ जावा सुन मेरी हरदास कदे।

अड़या लोक मारी दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये

हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया, नी पंजाब बने तू भुल गई है रीतनी, तेरी मेरे नाल रही ना परीतनी, ओदे नैना ने दुखां दा हंजू डोलिया, संदूक

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया, संदूक

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

ताई भैणने आनी बकरी पारोवे, भैणने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं घराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सोहरे घर जातीए कर लई फर्जां दी कमाई। जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई, जा सोहरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई। पटो

0: खंडाई चुक लतीये जाके जिथे लेखा चोक खंडाई जा सारे करतीये ले जा लड्डा परी विदाई जा सारे करतीये ले जा लड्डा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूपी तों बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहे हां कि ओह आण ते अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है आदमी ओ अमीर है कीते जिसने बड़े कपड़े कीते जिसने बड़े कपड़े बनया ओ कल वजीर है बनया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा अमीर सी सभ्याचार साडा गायका कीता लीरो लीर है गायका कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले पहला पाले घोगड़ बिले हुण सीने मारदा तीर है हुण सीने मारदा तीर है। दुध त सारा डेरी जावे दुध त सारा डेरी जावे ताइयों काना शरीर है ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े सुधर जांदे बड़े बड़े डंडा लुच्चियां दा पीर है डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने घर घर रांझे जमदे ने पिटदी फिरदी हीर है पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे कातल दे गल फुल पैंदे सच दे अखी नीर है सच दे अखी नीर है। असीं इक्को मां दे जाए हाँ असी इको माँ दे जाए हाँ बिच मजमा पाई लकीर है बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्कां ले लड़दा है टोनी जो हक्कां ले लड़दा है दसांझ ओ बहादुर वीर है दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्यवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तो बाद हुण मैं कपूरथला बसदी साडी शायरा रजनी वालिया नूं कामे फल दे विच सदा देण जा रहे हां। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ओ किवें मिट्टी नाल मुहब्बत करदे ने। रजनी वालिया जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
3: नमस्कार जी मैं रजनी वालिया कपूरथला तो अपनी रचना लैके हाजिर हाँ मिट्टी।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मन मानी पला ना लोचे किसे द बंदिया कर दाए नित हानि मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।